क्षेत्रफल के अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: Roll camera and action!
1: आदि वो लोग को शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना।
4: या कम ऑन,
3: बॉल की शूटिंग हमारे बगैर।
5: Fair to me,

सरे अर्श शहनाइयां बज रही है, पए मुस्तफा महफिले सज रही है, मसरत के शह को पयाम आ रहे हैं, खुदा की तरफ से सलाम आ रहे हैं। सजा बाग जन्नत मोहम्मद की खातिर, जली शमे रहमत मोहम्मद की खातिर, हर एक हूर जन्नत की दुल्हन बनी है, सरे

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया, या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया, कि जिसके सर पर आप

बात को अपनी नहीं हरगिज़ शरीयत के खिलाफ, कुफ्र का फतवा न लग जाए खता मेरी हुमाफ। सब्ज गुम्बद के करी देखो नजर आता है साफ, सात इंसानों के कुदसी करते हैं जिसका तवाफ, बल्कि काबे से

करबला में लाज रख ली आपने ईमान की, बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई। मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर आ

अपना वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालेनी मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को भी

को साफ करो, काबे का तवाफ करो, चलो चलो हज का महीना आ गया, चलो चलो हज का महीना आ गया।

0: चुटकी कहेंगी। अपने आप को बहुत चालाक।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे चुटकी मत कहा करो, अब मैं चुटकी नहीं हूँ।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम चुटकी नहीं रही,

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
2: फिर ना कभी कहना।